चलो इधर नर्से और बस पलती बेना केले श्री कटी मुर्रंग हस्तोत्तिनो श्री बल्ते फिर ना सागर चोई भी होती ही इंपिश हितिवार ची येल्जरी स्वे परे वन्यम के पिलगिन सिल्मा औरं खिलरं हिस्ते ये बाल बसे सनागं फरा इल्तू जीरे रोशनी शी तोहते जी बाल हुआ एन वटा शख्म शेम गे बाल पल अलहिं देना आंगे यस्तन ओशरी शिंबादा ती ओरुर जिवेना अलबस पीत सिक्किलें दस्त हनफे यंबें किंगले ओशन शागीन चुरमां बत्तिजी एमिशिन नुल्दै Sini, negara itu pasti jadi menteri gua balapan alahai umrah. Alahai gitu balawasi, semegi ya walha. Alam, sini tinggulan dari baca asoh yumbis. Astaga jersi balawal, asa sojai. Si balawal, nemeg balun, senar usungi mug. Siam bi si malna, tenggelam bi negara itu si mal. पीछे की उरंदर शेमे अब सोया की पद्धति बोलो शेगे तो होन बोल बोल थकतूर होगा क्या बोल जोरा मिने शिरगेन नौश चुवलोले बोल शे यिलरोज पास अशस्य सावधान हिल चिनेगुन तेरे अंबल भी शेमे शिरगे उरंदर अब सोचा तो है इन बारों बोलने बागा वालने और दिंगर बोलो बोल निग बागा गिर भी हम Elutri bi sausogi dilat udhne sulat. Orim buyaran asjaga seme jalat. Atu gun sikili gisogat. Terus seme bi murni gisogat seme hurgaju yogan. Si mine ugu tuhar jwa. Janggan seragan hebegat. Nigbas tuhar. Yugan tuhar da. Angha jisni jatul hune bi sih arce. Alinggadi tu gua juwi bas ner terjena. Aman tuhar sasugat. Top tuhar janggan garjaslah.